0: सिनेमा पर देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे टू स्टारिंग अजय देवगन एंड रकुल प्रीत सिंह।
1: तूने बता दिया ना सब घर पे?
2: कोर्स बता दिया।
3: थोड़ा बड़ा है मुझसे एंड ही इज डिवोर्स्ड। सो
4: कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
5: मुझसे 1.5 साल छोटा ही आदमी।

0: सिनेमा पर देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे टू स्टारिंग अजय देवगन एंड रकुल प्रीत सिंह।
1: तूने बता दिया ना सब घर के?
2: कोर्स बता दिया।
3: थोड़ा बड़ा है मुझसे एंड ही इज डिवोर्स्ड सो।
4: कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
5: मुझसे 1.5 साल छोटा है आदमी।
0: देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे टू आज शाम 6 बजे UK और 7 बजे CET आपके अपने जी सिनेमा पर। अवेलेबल ऑन स्काई 708, स्काई ग्लास 713, वर्जिन मीडिया 810, BT 395।
6: Have you spotted anything?
7: Only seagulls. Are you sure this beach is a nature reserve?
6: Well, the sign said, nature this way. Hey, what's that big bird over there? Flapping its wings, unusual markings.
7: You sure that sign didn't say naturists?
8: Oi, this is a nudist beach.
7: Ooh. Now, where are my binoculars?
6: Cheryl!
9: Struggling to read in the sun? Get 2-for-1 at Specsavers and make prescription sunglasses your second pair. From £70 with standard single vision lenses to the same prescription. Terms and conditions apply. See in store for details.
10: Advertise on the UK's #1 commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777.

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।